अमृत हरि का नाम, अमृत वाणी अमयो रस अमृत हर का नाम। मन तन हृदय सिमर हर, आठ पहर गुण गाओ उपदेश सुनो। गुरबाणी गावो भाई उपदेश सुनो, तुम गुर सिखो।

सफल हो मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद घन गुरबाणी गाव पाए सुख सहज आनंद गणा तब जपते दुख जाए नानक नाम जपत सुख लुके।